लखने अधर आगे करुबास चौकी चले खने खने चलु मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खनिया चर दाए खनी हुई भोर।

पास खने खने अधर आगे करो बास चौकी चले खने खने चलु मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर खनिया चरदाए खनी हुई भोर।